हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है, उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियाँ ही खुशियाँ है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है, 17 जुलाई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को ये दिन लाख लाख बधाई हो, मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए, 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। वेबसाइट होता है radio sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन के जरिए आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं, मेल भी आप कर सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल फोन के जरिए भी आप ऐप कर सकते हैं रेडियो SBS का ऐप पर। हमारा प्रोग्राम दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए आप सुन सकते हैं। प्रोफेंसी मेरे नीदरलैंड में और प्रोफेंसी साउथ हॉलैंड में डीएबी प्लस रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं, अपना मोटरकार में, अपना घरों में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हर सुबह आप सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए पेश किया जा रहा है और आप सभी सुनने वालों के लिए हर सुबह ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है कि सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

इसमें इसकी जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। शुक्रवार का दिन 17 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-6611 इसी डार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। संतोषी माता के गाले भजन अब की बार सुंदर भजन शुक्रवार की भजन यात्रा प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

माता के गाले भजन, सुंदर माता जी का भजन आज शुक्रवार की खास सुबह की प्रोग्राम में, प्रोग्राम भजन यात्रा में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस में इसके गए। हमारी सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है और ऐप कर रहे हैं, सभी को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना और स्टूडियो की ओर काफी सुनने वालों बस सुबह की वक्त तार कर रहे हैं गुड मॉर्निंग खुद मोर्ख कहने के लिए, सभी को शुक्रिया धन्यवाद आप सभी के तार के लिए। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर माता जी का भजन की ओर हम आपको

सुंदर सा माता जी का भजन आज शुक्रवार की खास सुबह की प्रोग्राम में प्रोग्राम भजन यात्रा में बस पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 5 मिनट बाकी है सुबह सरी 7 बजे में रेडियो वेस्ट में इसकी सरी प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो देश विदेश में हमारा भजन यात्रा प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में एक राम जी का भजन प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

प्रेम कुमार की आवाज में ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम आप अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में ये सुंदर भजन की ओर।

शर्मा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा माता जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर, और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन। और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है उनके लिए भी, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS की जरिए सुंदर सा आरती भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों, यहाँ तक आज शुक्रवार का खास भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। आशा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। कल शनिवार है, कल सुबह 8 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह, शुभ दिन और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman kleine en grote murti.

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में।

सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुनने वालों का प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चल

किया आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो वेस्ट में इसके जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज

बस और अनुराधा पोर्टवल की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और

रेडियो SBS की सरिये फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चले प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह, शुभ दिन, गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। शेरू ट्रैक से हॉलैंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार रबीन। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो चले पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में। बारादरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है।

24 घंटे फिल्म का नाम माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 9:12 वेडिट हो चुका है किशोर एन लता प्रोग्राम में। सुबह की प्रोग्राम में खूबसूरत नगमे पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में गजब फिल्म का गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है सुबह 9:30 में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन 17 जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मौसम आज का बदली बदली सा मौसम है, कहीं कहीं धूप दिखाई देता है, कहीं कहीं बादल छाया हुआ मौसम, अंधेरा अंधेरा सा मौसम है, लेकिन कहीं कहीं रिमझिम बारिश भी हो रहा है। आज का मौसम बदली बदली सा मौसम वेसल फालख वेर होगा।

प्रोग्राम में अगली बार द माइटी मुकेश की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और इसी तार के नंबर पर ऐप भी आप कर सकते हैं। अब वैसे आज के प्रोग्राम में कोई भी गाना कोई भी गीत आप सुनना चाहेंगे तो जरूर हमें खबर कीजिए, आपके नाम के साथ गाना हम पेश करेंगे आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम में। तो कोई भी गाना आप सुनना चाहेंगे हमें जरूर खबर कीजिए तार द्वारा ऐप द्वारा। चले माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना प्यासे पंछी फिल्म का नाम।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आश्रो में ठेकी गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। प्यासे पंछी फिल्म का गाना पेश की गई माइटी मुकेश की आवाज में। 1961 का फिल्म 1963 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। हमेशा की तरह आज भी इंडिया भारत देश नोएडा में अरुणेश हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। अरुणेश आपको आपकी पूरा परिवार को शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। आपने खास गाना मांग किया है आइडो फिल्म सबक और ये फिल्म भी 1961 का फिल्म है। 1963 का फिल्म मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में गाना को मांग किया है आपने। तो चले मिलकर इंडिया भारत देश नोएडा का रहने वाला अरुणेश की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। तेरी

रेडियो SBS की सर ये मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में फिल्म सबक का गीत पेश की गई और खास तौर पर इंडिया भारत देश नोएडा का रहने वाला अरुणेश ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से पेश की गई है आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही

हंसरो में देखिए ये गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की सर ये जो पेश की गई कन्हैया फिल्म का गीत अभी आपने सुना माइटी मुकेश की आवाज में और दीमन शहर का रहने वाला मनोज ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया और इसी तरह से पेश की गई आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आहिस्ता आहिस्ता वीकेंड भी आ रहा है और वीकेंड में भी मौसम जो है बदली बदली सा मौसम होने वाले हैं। टेम्परेचर तकरीबन 22 डिग्री से रहेगा खराब वीकेंड में और खासतौर पर कहीं कहीं बारिश का मौसम भी रहेगा हॉलैंड देश के अंदर। सुनने वालों कोई भी गाना कोई भी गीत आप सुनना चाहेंगे तो आपको मौका दिया जा रहा है आज की प्रोग्राम में। हमेशा ये नहीं होता है कि आपको हम मौका दें गाना मांग करने के लिए, लेकिन आज की प्रोग्राम में आप सभी को पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है कि आप एक गाना एक गीत को मांग कर सके तार आप कर सके स्टूडियो की ओर। टेलीफोन नंबर 0 3 2 2 6 6 11 पर या तो ऐप भी आप कर सकते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश होगा गाना जो अब की बार पेश होगा मांग करने वाली है रोटरडम की रहने वाली गीता रॉय। रोटरडम की रहने वाली गीता रॉय ये गाना को मांग किया है किशोर कुमार की आवाज में।

सुन वालो किशोर कुमार की आवाज में गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुन वालों की सेवा में है और खास तौर पर रोटरडम की रहने वाली गीता रॉय, ये खूबसूरत गाना किशोर कुमार की आवाज में मांग किया जो आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और इस गाना को मांग करने वाली है आम्स्टरडम सैटोस की रहने वाली श्रीमती बेया जो हमेशा पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं। और आज की प्रोग्राम में लता जी की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना, उसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं।

सजना फिल्म का गीत भोजपुर का में पेश की गई। आमस्टरडम सर्टूज की रहने वाली श्रीमती बेया ये खूबसूरत गाना लता जी की आवाज में मांग किया जो पेश की गई। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शुक्रवार का दिन 17 तारीख जुलाई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। काफी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, अपना अपना गाना को मांग कर रहे हैं। ऐप जोर तोड़ से भी अंदर आते हैं रेडियो SBS का ऐप पर और बहुत सी सुनने वालों रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी तार कर रहे हैं। आपको भी ऐप करना है तो जरूर अपना मोबाइल टेलीफोन मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए आप हमारा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं या तो टेलीफोन नंबर स्टूडियो का काम में लाइए 030-262-6611 ये स्टूडियो का टेलीफोन नंबर होता है और खासतौर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप नंबर भी होता है। अभी अभी स्टूडियो की ओर तार किया है और रोटरडम साइड की रहने वाली शीला शीला भी हमेशा हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। और आज की प्रोग्राम में लता जी की आवाज में एक बड़ी ही खूबसूरत गाना मांग किया है। फिल्म का नाम नागिन मेरा दिल ये पुकारे कि तू आजा। खूबसूरत गाना लता जी की आवाज में।

पुरानी फिल्म नागिन का गीत पेश की गई लता जी की आवाज में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। रोटरडम साइड की रहने वाली शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आपकी बधाइयां के लिए भी लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। मिनट बाकी है हॉलैंडीज के अंदर में सुबह 10 बजने में। काफी दिनों के बाद देनहाग शहर का रहने वाला नौशाद ने तार किया है, और नौशाद मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना सुनना चाहते हैं, तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है। देनहाग शहर का रहने वाला नौशाद का खास मांगी हुई गाना।

दस बजकर प्रोग्राम में चार मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11 पर आप तार कर सकते हैं और इसी तार के नंबर पर ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। रेडियो SBS का ऐप के जरिए और ऐप भी आप कर सकते हैं। सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं। आज शुक्रवार का प्रोग्राम जो है सुनने वालों, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे फ्राइडे 28 अगस्त रक्षाबंधन का दिन है और मुस्कुराता दुकान देहरा शहर से ये खबर कर रहे हैं कि यहाँ पर आप आकर अपना रक्षाबंधन अपना राखी जो है आप खरीद सकते हैं। सस्ती दामों में हजारों हजारों रक्षाबंधन अंदर आया है जो आपको सस्ती दामों में दिया जा रहा है। अभी से अपना रक्षाबंधन आप जाकर खरीदिए मुस्कुराता दुकान के पास कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 देहरा शहर के अंदर में जो है सबसे बड़ा दुकान जो होते हैं यहाँ पर इंडिया भारत देश का कपड़े गहने और तमाम सामान आप खरीद सकते हैं। खासतौर पर दुल्हा दुल्हन के लिए भी सभी सामान यहां पर आपको दिया जा रहा है। सफेद कपड़े के लिए भी अगर आपको जरूरत पड़ा तो यहां पर भी आप खरीद सकते हैं। सबके सब सस्ती दामों में मुस्कुराता दुकान कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर है देहरा शहर के अंदर में। गाड़ी से आप आएंगे, मौत घाट से आप आएंगे, फ्री पार्किंग यानी कि ग्रेटिस पार्किंग है। चले फिल्म दो बदन मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म दो बदन का रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड ये गाना आज के प्रोग्राम में मांग किया है।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो बदन का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। रोटरडम शहर का रहने वाला हारोल्ड का खास मांगी हुई गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आंसर उम्मीद है गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। 10:12 व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार आम्स्टरडम शहर से महेंद्र ये गाना को मांग किया है। फिल्म का नाम दो डील।

आम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है। सुनने वालों हर एक कामों काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी डार की नंबर पर सभी और सभी इन्फॉर्मेशन इन्फो आप ले सकते हैं। फरमाइश हुआ 5 यूरो पर फरमाइश, तमाम खबरें तमाम रिक्लाम भी सस्ती दामों में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। चले गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से मोहम्मद रफी होगा प्रोग्राम में और देहरादून शहर का रहने वाला देखा जाए विनोद का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। इस वक्त काम कर रहे हैं, नौकरी पर है और हमारा प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम को सुनते हैं और ये गाना को मांग किया है।

रेडियो एसबीएस के जरिए फिल्म एक नारी दो रूप उसी ये फिल्म का गाना पेश की गई मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आपने सुना दनहाग शहर का रहने वाला विनोद का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

की आवाज में दाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। देन हाँ शहर की रहने वाली सिंथिया सुखू की खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और वो भी माइटी मुकेश की आवाज में।

सुन वालों घड़ी की ओर देखा जाए, साढ़े दस का वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। टेम्स ड्राइव 237 से यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा और गाना को मांग करने वाला है रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू। रशीद पीरू खास गाना आज के ये प्रोग्राम में मांग किया है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। रशीद लीजिए, आपकी मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और खास तौर पर रोटरडम शहर का रहने वाला रशीद पीरू के खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रशीद शुक्रिया, शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि 21, 22 en 23 augustus Milan Summer Festival Zuiderpark Den Haag Shahar ki andar mein is saal voor de 42ste keer 21, 22 en 23 augustus Milan Huga Milan Summer Festival de eerste en de grootste Milan in Nederland. Special apko khabar kiya ja raha hai vrijdag 21 augustus live from Trinidad. Full music group ke saath, music group Dile Nadan ke saath. Live on stage rahenge, live from Trinidad, Raymond Ramnarayan. Vrijdag 21 augustus, Milan Summer Festival be rahenge, live on stage. Music group Dile Nadan ke saath, Raymond Ramnarayan. Sabhi informatie aur ticket ke liye, kram verhuur ke liye. Website hota hai milansummerfestival.nl। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं Den Haag शहर की ओर और वहां पर भी और सालों से हमारा प्रोग्राम रेशमा भी सुनते हैं और रेशमा आशा जी की आवाज में गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना डेन हांग शहर की रहने वाली रेशमा की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए महेंद्र कपूर जी की आवाज में एक गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर जी की आवाज में और खासतौर पर आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम दहलीज और उत्तरा शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का खास मांगी हुई गाना आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर।

उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगे हुए गाना आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी की आवाज में बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों, आप सभी सुनने वालों से गुजारिश है, निवेदन है, गाना के लिए मत ऐप कीजिए, तार कीजिए, इसलिए कि तकरीबन 11 बजे तक ये प्रोग्राम पेश किया जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता भी खत्म होने पर आ रहा है। उत्तराखंड शहर का रहने वाला साल अर्जुन का मालिक अर्जुन नारायण अब के बारे खास गाना सभी सुनने वालों के लिए बस मांग किया है। चले मिलकर सुनते हैं अशोक।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई अशोक घरे की आवाज में, और खास तौर पर गाना को मांग करने वाला था साल अर्जुन का मालिक अर्जुन नारायण का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए। अशोक घरे की आवाज में कभी अजनबी थे उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में अब की बार गाना पेश होगा उत्तराखंड शहर का रहने वाला अक्षय नंदा। अक्षय नंदा का मांगी हुई गाना बुढ़ा मिल गया फिल्म का नाम है। किशोर कुमार प्रोग्राम में रात कली एक ख्वाब में आए।

किशोर कुमार की आवाज में रात कली एक ख्वाब में आए, बुढ़ा मिल गया फिल्म का नाम। उत्तराखंड शहर का रहने वाला अक्षय नंदा का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश होगा और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है। आमस्टरडम शहर का रहने वाला मीका सुक्खू, मशहूर गाने वाला जो है हमारा सूरीनाम देश का, मीका सुक्खू का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। एक बड़ी ही प्यार भरी गाना हमारा भैया ने मांग किया है सभी सुनने वालों के लिए। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में फिल्म का नाम सूरज। आमस्टरडम शहर का रहने वाला मीका सुक्खू का खास मांगी हुई गाना।

0: आम्स्टरडम शहर का रहने वाला मीका सुको जी का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और काफी पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है शुभ दिन पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। यहाँ तक पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश की गई। सभी जो प्रोग्राम में हिस्सा लिया सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। कल सुबह ठीक 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अब की बार पेश होगा

रेडियो SBS की जरिए खास गाना प्रोग्राम में पेश की गई। शुरू वालों 5 मिनट बाकी है, सुबह साढ़े 11 बजने में मौसम की ओर देखा जाए, इस वक्त बाहर की ओर हम देख रहे हैं तो

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस यही काफी है, हर एक मौसम भी अपना लगे, तेरे इश्क में ये दिल कहे अब और कुछ भी ना चाहिए।

एक गाना बस पीस की गए। फिल्म का नाम कर्ज, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्ज का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना बस पेश की गई है। चले शान और महालक्ष्मी आयर की ओर।

महा लक्ष्मी आयर की आवाज में गाना बस पेश की गई शादी का लड्डू फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए गाना भी आपने सुना।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

प्यार किसी से होता है, लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ पुरानी नगमे आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और हमारे बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं रेडियो SBS का। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-2266-6611। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना फिल्म जानवर से बस पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले किशोर कुमार एन आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म जवानी दीवानी की ओर। द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द रॉकेरो क्वीन द नाइटिंगेल ऑफ एशिया आशा भोसले।

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर और उषा खन्ना की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम जॉनी।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, खासतौर पर किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में अबकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड या कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं।

थे लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई, काफी प्यार भरी गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए फिल्म जुगनू, उसी फिल्म का एक गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, सॉन्ग बाय द मैन विद ग्रीन वॉइस, एक बार फिर से किशोर कुमार प्रोग्राम में।

जनाब उस प्रोग्राम में पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर और लता जी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। उसी फिल्म से अबकी बार ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

करा मेरे जीवन साथी किशोर और लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और आरती मुखर्जी प्रोग्राम में होगा।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनवालों की सेवा में आरती मुखर्जी और मुकेश जी की आवाज में गाना भी आपने सुना। पुरानी फिल्म अनारी की ओर हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से मुकेश की आवाज में।

कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना खासतौर पर स्वर्गीय हेमंत कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

0: मैं चलता हूँ मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

0: रण लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

इस गाने में तो आपने पूरी रामायण ही सुन ली। बेहतरीन गाना आपने सुना उदित नारायण और अलका याचिक की आवाज में फिल्म भवाई से। और अब आप सुनिए फिल्म अजनबी से। मुझको नींद आ रही है, सोने दो। दिल कह रहा है कुछ होने दो।

सोनू निगम, अलका याचिक और कोरस की आवाज़ में आपने सुना ताल पे जब ये जिंदगानी चले, फिल्म रेफ्यूजी से। ये पहला फिल्म था अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म हेलमेट से। गोल्ड बॉय और शिप्रा गोयल की आवाज़ में आप सुनिए बर्बाद।

रहना है तेरे दिल में, बस आउट द फिल्म मुझे कुछ कहना है, एंड आउट द फिल्म काबिल कॉम्ट काबिल हूँ मैं, खुशों दो जुबेर नौटियाल एंड पलक मुच्छल।

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम टू द फिल्म वो लम्हे हाउ द फेदर मैट बर्थडे बैश सॉन्ग दूर यो यो हनी सिंह एंड द फिल्म दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड।

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से, देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा en is gezongen door Suniti Chauhan en Alka Yachnik. Gaan we dan verder met uit de film Dil Dharakne Do, het liedje Gala Guria.

इधर चला मैं उधर चला। आपने सुना फिल्म कोई मिल गया से, और अब आप सुनिए फिल्म मिलन तौकी से नेहा करोरे की आवाज में शर्त।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले वस अर्ध फिल्म लगान। एन अर्ध फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्थ सॉन्ग दौर सोनू निगम एंड अलका याचिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

तू जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे मैं आऊंगा। आई लव यू माई एंजल वॉज द फिल्म प्यारे मोहन एंड इज गेजोंग डोर कुनाल गांजावाला। Het volgende liedje via Radio SBS in het programma Gitonke Leher is gezongen door Arijit Singh. Uit de film Holiday komt Aaj Dil Shayarana Lagta Hai.

चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चिगिरिगि चि